थाई उछिंदा हुदाई सरात दियुसो हफ्तार महीना बनी थाई हुनाने का काम गर्दा बेला बीते को पनी नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव वसन कुमा वसन कालिका गोरछ गरुण र दानवहरू नागमा रावण नासिका सन्तल

0: मैजुन व्यवहार काची जाती एक एक नाशियो
1: साजन वेद सदा जो भाई मैं हम नाम सिखा रो।

सुर दिया। गंगा माया बुढ़ा सखी का आवाज में सजी को निके मीठो लोकप्रिय श्लोक सुन्न भो। वहां आज यह धरती में हन्न वहां को आवाज हमी संगे वहां को आत्मा को चीर शांति को कामना करूं। श्रोता हम प्यारो जन्मभूमि हम प्यारो संस्कृति हम भूगोल यहां का कला साहित्य संस्कृति में हम जीवन है। मानस का माटो को अपूर्ण समुद्र और नाता नहीं देख सकती है। आपू जन्मे माटो सब प्यारो लो संस्कार संस्कृति सब का लगी प्रिय हो। देश को मायालाई नै देशभक्ति देश प्रेम व राष्ट्र प्रेम हुने गरेछ। मानिस जुन समाजमा हुर्कन्छ बढ्छ बाँच्छ त्यही समाजको संस्कृति उसँगै हुर्कदै आउँछ धन्यदै आउँछ मौलाउँदै आउँछ। यस्तै यस्तै संस्कार र संस्कृति हुर्काउँदै बढाउँदै संरक्षण गर्दै ल्याउनु हुने हाम्रा ज्येष्ठजनहरूले सँगसँगै गलाहरूलाई पनि सँगसँगै बोकेर आए। यस्तै कला र गलाले भरिएका दोलखा सुनखानी निवासी भगवती शिवाकोटी र उहाँकै बहिनी दोलखा मेलु पवटी निवासी लक्ष्मी विमलीको आवाजमा रहेको यो निकै मिठो श्लोक तपाईँ सामु सम्प्रेषण गर्दैछु।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए
1: लाउड,
0: ये जाती महंगे क्रम में जहाँ होता डंका
1: क्राउड,
0: लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट।

का लागि राजकुमार ढुंगेल सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844059929 र उमेश रोकाए सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844030282।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम मैले थपलो 7 मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुलाई 24 तारिक श्रावण 8 गते शुक्रबार दशमी तिथि भोलिको एकादशीको नाम हरिसैन्य एकादशीको व्रत हो भोलि अनि बिर्सनु होला हरिसैन्य अनि बड चतुर्मास व्रत लिने पनि हो हरिसैन्य एकादशी अनि तुलसी रोप्ने भर्ने दिन हो अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षेण कल्पै भरी

मा करहो प्रहाद करहो दाल की थोड़ी महू यही वर्ष महापति मरी गए मेरो विपद के कहू सबकल की मथी विवाह करी दिए बूढ़ा कुरुपी कना मेरे वर्ष महा